आकाशवाणी कटक आज सोमवार 1948 शताब्द आषाढ़ 15 दिन इंग्रजी 2026 मसीहा जुलाई मासर 6 तारीख समय वर्तमान सकाळ 5:58 35 सेकेंड आमर अगणित प्रिय श्रोता बंधुंकु प्रभाती अभिवादन जणै आरंभ करूछु आजर अधिवेशन कार्यक्रम प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ज जोगे एही कार्यक्रम डीटीएच एवं न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे मध्य प्रसारित होउछि।

0: ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଧନ ଜନ ଯୌବନ ପାଇଁ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କାଳ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक

0: विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विम्बलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विम्बलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मूचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधुमाने कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। आरंभ करुछु आजिर बंदना।
2: भक्त तांकर सखा, भक्त तांकर बंधु, भक्त पाई से धारण करिछंते शंख चक्र चिन्ह, भक्त पाई से सर्वदा अधीर आउ विभोर, से कृपा सिंधु, भक्तर मंगल पाई, भक्तर मानसिक पूरण पाई से सतत चेष्टित, से सर्वदा क्षमाशील केवल भक्त मानक पाई, सेइथिपाई पूरा से भक्तर भगवान। ভক্তকবি সালাবেগঙ্ক রচনা গাইছন্তি অক্ষয় কুমার মহান্তি।

0: ससौला कृषि सूचना एथर शुणु पापाग सूचना चासी भाई और भौनी मानप मिलिथिबा पानीपागर पूर्वाभास जणा जाय जे आसंता 24 घंटा मध्यरे ओडिसार जिल्ला गुडीकर अधिकांश स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा बा घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना अछि। सतर्क सूचनारु जणा जाय जे राज्यर बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा एवं बलांगीर जिल्लार गोटे दुईटी स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एही समय मध्यरे इस अंचल रे ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। राज्यर कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, ढेंकानाल, केउझर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर एवं नयागढ़ जिल्लार गोटे दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एही समय मध्यरे इस अंचल पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सुनिले पाणीपागर सूचना। श्रोता बंधुमाने कार्यक्रम सुनिछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। एठी कहि रखुछु कृषि संसार प्रचार करिबु राति 7:30 रे एथिरे सुनिबे कृषि समवाय माध्यमरे आत्मनिर्भरशीलता आलोचिका ममता पंडा। आकाशवाणी कटक समय वर्तमान सकाळ 6:55 हेबाकु जाउछि। हमर परवर्ती कार्यक्रम संस्कृतरे संवाद रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्लीरु किछि क्षण मध्यरे।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रोवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहम् अलंकरिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्रीशाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवत

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के

0: में सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
1: उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधारभूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार

0: कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनके अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में

ए दुनिया एक रंगमंच एठी जीवन आगे चले भिन्न भिन्न भावरे भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रकार रो अभिनय सारी समस्त को पुणी लेउटी जीवाक पड़े सेठिकी जेउंठू आमे आसीचे किंतु किछि लोकंक नाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई जाए सबदिन पई तांकर उल्लेखनीय कृति पई सेमिति अनेक महापुरुष विद्वान जन्म नेइछंती आमर ए अखंड भारत भूंरे जुगे जुगे जहां को आमे आज भी मन पकाउछे।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, उसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती, बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय

0: पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत था उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ, उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का। इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की है।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
3: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही

0: उपयोगिता है सोलर सेल में। तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट, रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
0: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कंपटीशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है कि भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस वृक्ष मित्र पुष्कर प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगा।

0: गाने का मन किया और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
1: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
0: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
0: आज ये पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ मादर की थाप गुजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातीय कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर।

0: भी बने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
2: इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
2: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
3: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
3: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे

0: खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
1: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଗେ ଗୃହୀତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରେକର୍ଡିଂ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
4: ଯାହା ଖବରେ ତୋଡ଼ି ମରୁଡ଼ି ନହିଁ ଚାହତି।
5: ବହୁତ ସାରେ ନିଜି ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ନିଜି ଚ୍ୟାନେଲ କେ ବୋଲବାଲା ମେ ହମ ସମଝ ରହେ କି ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ इसकी रिलेवेंसी क्या है।
4: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
5: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
4: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज।

0: पीढ़ी पाई रही था चेटिनर सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनर सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: लोकगीत कार्यक्रम शुणु गोपाल ओगाड़ परेषण कर प्रशांत दास एवं साथी।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖଟରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से

संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेल्पलाइन क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु।
1: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीति पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: लोक संगीत रे प्रचार करूछु महुरी वाद्य परिवेषण करिछंती क्षेत्रवासी मल्लिक।

0: She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital, Kiev, this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which U.S. President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the five-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Arina Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Arina Sabalenka. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को

0: प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी

0: में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन

0: पर्चों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
3: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदुल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले

की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच

आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपनको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाट सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाट सीमेंट

अरे अरे प्रीति मो, अरे अरे प्रीति मो नौबत फोना, अरे प्रीति मो नौबत फोना। से फोनारे गोरी तुता, से फोनारे गोरी तुता मुंडा, छेना छेना प्रीति मो, अरे अरे प्रीति मो नौबत फोना, अरे प्रीति।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु चलित अधिवेशन कार्यक्रम संपर्क में सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर सतुरीतम भाग संध्या छटा दस मिनिट्रे युवशक्ति संध्या छटा तीस मिनिट्रे शुणे जनसंख्या वृद्धिजनित समस्या युवपीढ़ी आहवान आलोचक डॉ दुर्गा प्रसाद मिश्र। जिला हालचाल शुणे केन्दुझर जिला संपर्क में राति 17:25 मिनिट्रे कृषि संसार राति 17:30 मिनिट्रे शुणे कृषि समवाय माध्यम आत्मनिर्भरशीलता संपर्क में ममता पंडा सहित आलोचना। हिंदी चलचित्र गीत राति 8:02 मिनिट्रे कैलाशनाथ त्रिपाठी गायथ्वा ओडिसी गीत राति 8:30 मिनिट्रे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली राति 9:30 मिनिट्रे नाटक बेबी सीटर प्रचार कर राति 10:02 मिनिट्रे रचना आनंद चंद्र पही प्रयोजना रणदीप प्रधान पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन शुणे राति 10:30 मिनिट्रे। आसंताकालीर कार्यक्रम सूचना। वंदना प्रचार कर सका 6:05 मिनिट्रे अनुचिंता सका 6:35 मिनिट्रे उपस्थापना रत्नाकर चयनी श्रीमद भागवतर 88तम भाग सका 6:40 मिनिट्रे आमर स्वास्थ्य सका 7:10 मिनिट्रे शुणे ब्रुकक्रे पथर आलोचना करेंगे डाक्तर रंजित आचार्य प्रभात परिक्रमा सका 7:25 मिनिट्रे कथिका सका 7:35 मिनिट्रे शुणे वन ही जनपदर आधार आलोचक विजय केतन पट्टनायक मधुमालती सका 7:40 मिनिट्रे कंठशिल्पी बादल कुमार आचार्य संगीत पूर्णचंद्र खुंटिया श्रीक्षेत्र माधुरी सका 8:30 मिनिट्रे एथिरे शुणे कराबुड़ सेवा आलोचक रवि नारायण महापात्र वैदेहिक विलासर 77तम भाग सका 8:45 मिनिट्रे नाटक देख वर्षा आसुची प्रचार करिबु दिन 10:00 मूलमंच नाटक रति मिश्र बेता रूपांतर बसंत महांती प्रयोजना सुरेश चंद्र नायक अभुला गीत दिन 11:10 मिनिट्रे कंठशिल्पी सुरेश कुमार सेठी एवं श्वेतालीन पट्टनायक पाला दिन 11:30 मिनिट्रे परिवेशन करिबे उग्रेशन पाढ़ी एवं साथी केन्द्रा गीत दिन गोटाए 10 मिनिट्रे परिवेशन करिबे हरमन जेना नारीमहल दिन गोटाए 20 मिनिट्रे शुणे जलवायु परिवर्तन और वृक्षरोपणर आवश्यकता आलोचना करिबे सुनीता जी। युववाणी प्रचार कर अपराह 5:30 मिनिट्रे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 71तम भाग संध्या 6:10 मिनिट्रे उदय भारत प्रचार कर संध्या 6:30 मिनिट्रे जिला हालचाल शुणे खोर्धा जिला संपर्क में राति 17:25 मिनिट्रे कृषि संसार राति 17:30 मिनिट्रे शुणे वन महोत्सव तात्पर्य आलोचना करेंगे विनोद आचार्य वनखंड अधिकारी चंदका हिंदी शिक्षा कार्यक्रम राति 8:30 मिनिट्रे शिक्षादान करेंगे कृष्ण कन्या आचार्य शिक्षा ग्रहण करेंगे अपर्णानंद क्रीड़ा पत्रिका कार्यक्रम प्रचार कर राति 9:30 मिनिट्रे दंडनाच गीत राति 10:02 मिनिट्रे परिवेशन करेंगे परमानंद भई एवं साथी श्रोता अनुरोध में ओडिया कथाचित्र गीत राति 10:30 मिनिट्रे। गीत गीतिका शुणे सका 9:00 कार्यक्रम मंजुला मध्यान शुणे हिंदी एवं ओडिया कथाचित्र गीत श्रोता अनुरोध में एसएमएस जरिया दिन 12:00 ओडिया कथाचित्र गीत शुणे अपराह 2:45 मिनिट्रे अपराह 5:00 और राति 7:02 मिनिट्रे असरंदी अपराह हिंदी चलचित्र गीत अपराह 3:00।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: अमेजॉन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पंचसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उस

0: 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखीकरिष्यति। अद्य मैक्सिको नगरस्य एज़्टेका क्रीडांगणे मैक्सिको देशस्य विरुद्धं नाटकीयतया 3-2 इत्यंकैः विजयं प्राप्य इंग्लैंड देश फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: अपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार कर्यक्रम युवशक्ति प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय।

0: कौन जेमा बापा आलोचना मन को गला तो
1: मन को गला माने हेई परा टिप्पा खातरे टिप्पी की रखिली
0: प्रत्येक पाई समस्ते
1: समस्त पाई प्रत्येक
0: समवाय सबु बेले आम सहित रहिची आमर चासी भाई भौणी माने केमिति सशक्त हेबे केमिति सुदृढ़ हेबे एवं सबुठारु बड़ कथा हैला समृद्ध हेबे
1: हेले माळ
0: ह
1: महाशयंकु आम बैठक घर तरफरु आउ थरे धन्यवाद ए माळ
0: ह
1: आमको त ये विषय सुनिकी आ सुविधा हैला आउ कोन आमे काम करिबा हेले एंति बसी गपुथुबा ना संध्या बेळ बैठक घर सब किछि हैला पानी पाक सुनी मानी
0: नाही लो अपा मेघ पानी दिन पानी पाक रो खबर सुनिबा तापरे उठिकि जिबा
1: हौ ताले
2: चासी भाई ओ भोनी मानको पे मिलथुवा पानी पाक सूचना जणा जाइछि राज्य रो समस्त जिल्ला रे स्वल्पर मध्यम धरणर वर्षा किंवा घड़घड़ी सहित वर्षा होपे।

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଓ ଛାନ୍ଦ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्वकप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रभवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की

0: 2500 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में

0: बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight.

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें।

0: सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीजों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों के इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई है, एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में अब नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछे, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कोई सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं
0: जी।
2: तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं होगा
0: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं।

0: रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
1: हाँ, धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है।
0: जी रवि,
1: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: जी, सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
1: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है, वो डिजिटल साक्षर कैसे हो? क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त
2: करोगे,
1: इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
2: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET, नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
0: जी।
2: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं, वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं, हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफी मटेरियल है, उस पे काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
0: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
0: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग, आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ, या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
0: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
2: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं,

0: और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं. आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है. कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो. अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं. ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए. उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है. ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का. तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए.
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा. चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन. विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है.
2: सभी को नमस्कार
1: जी.
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से. सर मेरे दो सवाल हैं. पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा. तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए. दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर. तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी.
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूं. पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करेंगे
3: आप.
1: ठीक है, शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट हो गया है.
1: लेकिन 1930 के बारे में कुछ.
3: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ. तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं. या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में यह भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है. तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा. ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए. और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है. आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से. क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है. ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है. सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है. इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए.
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी. तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय जी. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं. देशदीप दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी. नमस्कार
3: नमस्कार
1: जी. नमस्कार
4: जी कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार।

0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन।
1: जी मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
2: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
3: जी,
2: स्टूडेंट्स
1: जी सर।
2: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या एनपीटेल नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें आईआईटी कानपुर या आईआईटी के बड़े एमटेक मास्टर्स पीएचडी के कोर्स से लेकर के और जो आपके ट्वेल्थ के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के आईएम्स के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। ओडिशा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
3: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजनाएं हैं?
2: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
3: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
4: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
3: जी
4: सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
3: जी बताइए।
4: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें भी चलाना आता है वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
0: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उसपे बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं, तो वो ओटीपी आना या

0: मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें आज की डेट में की फीचर्स फोन ही बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जितनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियां कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती है कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूं। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के

0: केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
2: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज को एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर तीन पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: तो
1: एवं
0: अरे कौन है तो आखिर लोह कहेंगे उड़ाजहाज प्रथम थर बसुच्छ डर लगुच कि मोटे डर ना अरे तो अंटा बेल्ट ठीक भाव बंधा जाइए किसी भय ना देखो ये उड़ाजहाज भितर आम ओडिया कथा कहीं बुझे एक सत हेले तू एम आखिर लुह कड़े कांदे समस्ते जापर जो तू कांदुचु अंर भाषा सिना ये जी मैंने बुझीपरि हेले कांदवा हसर भाषा तो समस्त को जना तू एम कांदे मत नाना लोक नाना कथ पचारे तोर कौन असुविधा मत कह कहीं कांदुचु कहल
2: ना मत डर भय कि लगुन ये मोर खुशी लुह मु आज उड़ाजहाज चढ़ी मो पु सांगे अमेरिका जाऊँ से मोर बहु नीलिमा आती अच्छा से मू देखी ये तो मोपाई खुशी आ गौरव कथा
0: तो कांदिलु कहीं
2: हेले तो अमेरिका चाकरी तो बाहर कि तो पिला छुआ कि देखा को तो बापा आज नहांती तो इंजीनियरिंग पढ़ार शेष वर्ष सी आखि बुझे कथा आज भारी मन पड़ी
0: बो आम हिंदू धर्म विश्वास मनीषर देहांत हेले तार आत्मा अमर बापा अमर आत्मा जदि स्वर्ग थाए तेब से निश्चय आमको देखुवे आ खुशी होते से निजे आमेरिका न जापारे पु आज माँ को आमेरिका नहीं जा
2: हाँ से कथा सत सी जो था कहीं निश्चय खुशी होते
0: हाउ बापा मन दुख न कर तु से कथा भाव खुशी हम आउ मात्र अल्प कई घंटा पर आम अमेरिका रे पहुंची जीवा से ते तो नाती आउ बहु अपेक्षा कर
3: मम्मी प्रणाम
2: हेला हेला मा उठ
3: इते लेट कहीं की हेला कितिस तमें तो सका आठटे पहुंचा कथ दसटा
0: बाजिले दुई घंटा लेट नीलिमा
2: अरे मा नीलिमा मु नाती कहीं आनिलु आनिलु मु ताकु टिके देखे
3: नाई बो एत बाटर आपण आग धोईधाई कौन खातु तापर नाती को धरवे गेल करे नाती कौन कड़े चली जाऊ
2: नई नई तू आग मो नाती को आने
3: नाती को
2: आसिलु आसिलु मो धन मोर अंक रतन कहीं कांदुची रे बापा मो धन को किए मिला कि कौन मत अचिन्ह भावुचु हाँ तू तो जेजे माँ को केमिति चिन्ही बुझे तू रहिलु ए अमेरिका रे आउ मु रहिलु कहीं केते दूर भारत रे आलो आलो ये तो मो कथा बुझी गला ना कौन कांद बंद कर मो मुह को कटमट कर कौन बाड़े आखि काढ़ी मत चिन्हुची परा आरे ये टोका तो अबिकल मो क्षति परी ठीक तारी नाक तारी ओठ आखि मुह क्षतिर मुह छुआ बेले एकदम।

0: यारी परे गुल्लू गुलिया है थिला
1: देखुछ कि कड़ीनाथ केमती कांद बंद करी मम्मी को कोड़े रे गोड़ हाथ बाड़ी खेलुची आ हसुची मु जाने से मम्मी को पाखरे खुशी रे रहिबो मु एबे ताकु मम्मी को पाखरे छाड़ी दे बेस निश्चिंत रे मु ऑफिस जाई परबी आज कि 3 मास हो गला मोर ऑफिस जीवा पूरा बंद हो गलानी मु भाबुची काली टू ऑफिस चली जीबी
2: नहीं नहीं नहीं देखो बहु एठी एकदम नुआ एठी का चाली चलनी रहनी सहित संपूर्ण अपरिचित से ओडिया व्यतीत अन्य किसी भाषा जानी तमें अंत आउ 8 दिन घरे रुह बोउ एठिका परिवेश और परिस्थिति सहित परिचित हो जाओ तापरे तुम ऑफिस जीव कौन बो मु ठीक कहली ना
0: हई रे पुओ नीलिमा आउ तू दि जन जाक ऑफिस चली जीव तम भीतर केही जने हेले घरे रहिबो नाही
1: ये आम देश भारत नुहे मम्मी ये अमेरिका स्वामी आउ स्त्री उभय रोजगार न कले एठी चलिबा कष्ट
2: बुझलु बो नीलिमा आउ मु आमे दि जन जाक अलगा अलगा दिटा ऑफिस रे चाकरी करूछु आमे दुहे ऑफिस जीवा पई दुईटा कार किस्ती रे किनिछु रहिबा पई ये घरटा भी किनिछु काहेकि ना घर भड़ा रे नेले जेते टंका पड़िबो ताठु जथेष्ट भलो घरटे किनि दबा एथि पई प्रति मास रे घरर किस्ती परिशोध भी करूछु अमेरिका रे चलिबा पई बहुत टंका दरकार बु तेणु आमे दि जन जाक चाकरी नकले चली हबनी
0: जदि दि जन जाक चाकरी करछ घर काम करबा को काहा को जण को रखिछ ना नाही
1: एठी निज घर काम समस्त निज हाथरे करंती मम्मी काम वाली की रोसेयाटी रखिबा असंभव कथा कारण काम वाली रखिबा पई जते खर्च पड़िबो ता बहन करबा आम पक्ष संभव नहे
2: खाली आम पक्ष रे संभव नहे से कथा नहे बो काम वाली टी रखिबा एठी आम पर अनेक लोकक सामर्थ्य रो बाहरे
0: हां
2: खास सेइति पई लुगा सफा करिबा बासन माजिबा घर छाड़िबा घर ओळेइबा ए सब प्रकार घरोई काम पई मेसिन अछि
0: कोन एते कथा जानिछि कि पुओ मु भाबी थिली तमे एठी काम वाली रखी बेस आराम रे थिबो
2: नाही बो तू एठी किछ दिन रही गले बळे सब कथा बुझि जिवो तबे आमे दुई जण जक ऑफिस गला परे तोर एठी एकुटिया रहिबारे किछ हेलो असुविधा हबनी ए घर भितरे सब अछि जदि किछ असुविधा हुए तबे मते कि नीलिमा को फोन करि दबु
0: अरे नाही रे मोर किछि असुविधा हबनी तोर एई पुओ फड़ी सांगरे मो बेळो बेस खुशी रे कटि जिवो
1: फड़ी नुहे मम्मी मो पुओ ना फड़ी ना
0: हे एते बड़ो अखाड़ुआ नाटा मो पार्टी रे पोइटिबो नाही मा आ मु मोर डाकी भी फड़ी
2: नीलिमा तमे जानी ना आमो गां रे शत्रुघ्न को शत्रु गौरा हरि के गौरा मुकुंद को मकुआ सुखदेव को सुकुटा बोली स्नेह श्रद्धा डाकंती
1: हो सीए तांका नाती को श्रद्धा रे जोउना रे डाकुचंती डाकंतु से मम्मी को कोले रे आराम रे सोई पड़लानी मम्मी ताको मते दियंतु आपण जाई फ्रेश ही जानतु मु आपण को पई जलखिया आनुची
0: हाउ ने ताको सुआई दे जा
1: मम्मी आपण त केते दिन भीतर एठिका चलनी विषय रे सब जानिगले फर्डिनांड को एबे आपण रखंतु मु ऑफिस बाहरली
0: हाउ दे आ सुनो ऑफिस रु फेरिबु केते बेले
1: ऑफिस सरिबा संगे संगे मु फेरि आसीबी तबे मु एठी पहुंचला बेले को राती प्राय 8टा हे जाइथिबो किछि असुविधा नै मम्मी मु सब व्यवस्था कर दे जाउची ए देखंतु बोतल रे खीर भरी देची ताकु प्रति 2 घंटा रे थरे सुसु कले कि गुगु कले ए डायपर बदलि देबे वाइपर रे पछि सफा कर देबे
0: हो
1: मम्मी ए कपबोर्ड तळ थाकरे आउ दीटा डायपर आउ वाइपर अछि मोला डायपर सब एणे तेणे न पकेई ए डस्टबिन रे पके देबे
0: हो तू एथर जामा तोर ऑफिस बेळ डेरी हि जिवो मु सब ठीक ठाक करि देबी
1: हो मम्मी फ्रिज रे खीर अछि बोतल खीर सरी गले आउ थरे भरि देबे
0: हो
1: मम्मी आउ गुटे कथा
0: आउ पुणी की कथा
1: केई अजुना लोक डाकिले डोर खोलिबेनी मु गल्ला परे आपण भीतर डोर लॉक कर देबे एटा आमे फ्लैट रो 15 महला रे अछे आपण त लिफ्ट बेबार जानि नांती 15 महला रो पाहा चपटे ओलेबा आपण को पके संभव नहे तनो आपण आदो तळ को जिबेनी आपण कर जेते बेले जहा दरकार मते नहले आपण को पुओ को फोन कर देबे आम दुईजन को फोन नंबर कागज रे लिखे कि ए डाइनिंग टेबल पर रख देची हला
0: हाउ मा
1: सेमिति किछि दरकार पड़िले आम भीतर के हेले जने निश्चय आसी पहुंची जीवो
0: हाउ ठीक अछि तू जा मोर किछि असुविधा हबनी
1: मु तले बे जाउची मम्मी
0: हां जा
1: धोरे

0: ଶୁଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତୁର ବାଦନ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ଭାଦରେ ଲେଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख

0: करके दिखाने वाले हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଜିର ଶେଷ ସମାଚାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ସହ ମୁଁ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ଥାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାକର୍ତ୍ତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ନିୟମିତ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 37ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 494ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡ 16ରେ ଆଜି ରାତିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସ୍ପେନ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେରିକା ଓ ବେଲ୍ଜିୟମ୍ ଭିତରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମାଚାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।

0: ଶେଷ ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
2: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल करि देला। ए पर्यंत होटल रूम उपरे जीएसटी रो चारोटी दर लागुची। 1000 टंका रु कम दर युक्त होटल रूम उपरे 0% जीएसटी अछि। जेतेबेले कि 1000 टंका रु 2469 टंका मध्यरे थिबा होटल रूम उपरे 12% जीएसटी लागुथिला एवं 2500 रु 7469 टंका रो होटल रूम उपरे 18% टैक्स लागुची। आउ एहाठारु अधिक दाम रो होटल रूम उपरे 28% जीएसटी लागुथिला, किंतु एबेठारु होटल रूम उपरे केवल 2 दर लागू हेबो।
0: एतेबेले से सुनथिले कार्यक्रम रिले करी प्रचार करथुलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु श्रीक्षेत्र माथुरी। आज इथिरे रहिछे पूजा पंडा सेवा संपर्क रे आलोचना करिछन्ते रामचंद्र पूजा पंडा।

0: अपा
1: हा?
0: देखो
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
2: सब बेले शॉपिंग।
0: आई नो मा खर्च करिबारो बयस एटा राइट
3: सेविंग करिबारो भी बयस एटा।
4: आई नो बापा सेव करो उचित जगह रे निवेश करो मूलधन ऊपर सुध मिलिबो जहां को पूर्ण थरे विनियोग करले सुध मिली चालीथिबो। आई नो ना आरबीआई कहे
5: करो सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: नमस्कार श्रोता बंधु आपणंकर आमर आम समस्तंकर प्रिय कार्यक्रम
7: मो पसंद को आपण मानंकु स्वागत करूछु
6: मो नमिता
7: आउ मो जस्मिन।

0: हेलो मपसंद
1: हेलो शुभ सकाल नमस्कार
0: नमस्कार मुन्ना पंडा भाई केमती अच्छा
1: मुन्ना पंडा कोटिला कन्नपुर दर्शन करते माँ शाला आशीर्वाद अंधा बिंदा से खुश सुस्थ था माँ शाला घंट गोटे रखी
0: आपण तो आम मान सब ठाकुर को डाक सब श्रोता आपण भल माँ शारा आपन को भल रखु
1: सब गोटे कथा कह समेत भले था खुशी था भर मुझे जन अच्छी
0: हाँ निहाती समस्त भल रही भल लगे से कथा शुणिले
1: गोटे बाट बाछी से रेडियो रेडियो आप बहुत भल भल प्रोग्राम कर भल भल उपदेश दौन कार मनोरंजन साढ़े दुई पर्यटन सबकि अच्छी रेडियो के जीवन साथी कर जीवन सब सुख ही सुख
0: ठीक ठीक कथा
1: भल बाटे
0: बहुत कथा शिखबार अच्छी रेडियो रूटा तो भल कथा आपण मैंने जो भल पाइबा दौरान आम श्रोता बंधु मान रेडियो को जो भल पाइबा देखें भल चली समस्त समस्त कथा भल ग्रहण कर
1: सारा भारत कल आसे शुणे मो पसंद खाली ओडिशा ना ओडिशा बाहर कल आसे आप बहुत भल लगे कथबार्ता कर रेडियो शुणी से पदार्थ भी ओडिया भी कथबार्ता कर बहुत खुशी लगे आकाशवाणी कटक सारा विश्व को खेली गला आप कथा बहुत चर्चा।

0: दस कान हो गलानी मु कोन भूल गली कहिलु
1: तम संगे मते शामिल करेली हम देख दस हजार मेरे लिए काफी अच्छी हाँ जूता दुकान बताऊंगा
0: नाई नाई भाई नाई नाई नाई तीन जन हेले अशुभ शास्त्र कहिछि
1: हाँ तीन जन अशुभ अशुभ क्या है भाई हाँ तुम्हारा जगन्नाथ तीन लोग अच्छी बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन लोग नहीं
0: तो ना कौन
1: अरे राम लक्ष्मण सीता तीन लोग है
0: अरे रोक राम लक्ष्मण तो ना कौन
1: अरे मेरा नाम तलाश का मैं रत्ना बेरा को पहचानता हूँ भाई याद रखो
2: ताले तू रत्ना बेरा को जानी चुनो हाँ ठीक अच्छी मिया भाई ताले तू ये आज ठारू रत्ना अनुसंधान पार्टी रे मिसी गलु वाली बात है
1: अच्छा भाई
2: कौन है ला?
1: ये सब रुपया कहाँ मिलेगा
0: बुझिलु मिया भाई हमें माछ दबु पछे हेले गाड़िया देखेबुनु
1: मैं सोचता हूँ कि जो पता लिखा है
2: हाँ।
1: वहाँ से 2 लाख रुपया अगर चोरी करके ले आऊं तो
0: ओ कोयला कौन है 2 लाख रुपया चोरी करके ले आऊंगी तो
1: हाँ।
0: या तो चोर के उठ करो अरे टोंका पाई चोरी करी
1: अरे हम कौन कहू टे भाव हमसे पहले जदि से हबीलदार का बच्चा है रत्ना को पकड़ लिया तो हमें क्या पाई
0: छेना गुड़ो सत्य तो गोविंद
2: ये तो लाजमिया ठीक कहू रे हाथ कड़ी
0: ताले कौन करवा
2: चोरी चोरी करवा चोरी
0: नहीं भाई नहीं नहीं नहीं नहीं गोविंद भाई मु चोरी करी धरा पड़े ना से हबीलदार चोप्पा छड़े दब चोप्पा
1: चोप्पा छड़े दब अरे मैं चोरी करूंगा भाई सिर्फ तुम दोनों मेरा पास खाली खड़े रहना
2: ठीक अच्छे सुन काली नुह पहर दिन जीवा समस्ते मेल हवा ठीक 4 बेले बाहर चल हाथ कोड़ी
0: चल गोविंद चल चल
3: मानसिक प्रेमलता तमराण जह्न को देखिले तमें भारी मने पड़ प्रिय जह्न देखि मने पड़े जह्नि जह्नि मंजी रे तमरो मुह जल जल दिसि जाय हाय
4: हेटी तमे मते सतरे नाव करछ ना
3: माने माने तमे मते डाउट करछ प्रियतमा प्रेमलते मो लव पूरा पूरी 24 कैरेट हां
4: नाही डाउट नाही जे
3: जानिछ तम लव रे पड़िला दिनु मते चरियाड खाली प्रेमलता प्रेमलता प्रेमलता मय दुसछि भीम भोई को अलेख भजन माडिला भलिया मते खाली कविता कविता माडुछि सुनिबो तम आखि आईना रे
4: एत्ते बडो आईना गोटे किनिले केत्ते टका पडिबो जे
3: 100 कि 200 टका पडिबो से कता छाडम मो कविता तम हृदय को केमति छुंचि कहिला अरे बढ़िया हैनी अरे एथर मते सम्मानित न करी आउ गति अछि रसिक शेखर रसिजुक्त कुंथन दास को प्रेमिक कवि उपाधि न दे एथर जिबे कुआडे
4: हेटी गोटे कथा कहबी रखियो
3: गोटे काई कि 100 कथा कुओ प्रियतमा हृदय सुरी प्रेम लते तमरो जो कोकिल परी कंठ ना आहा तमराण कोइली गाइले तमे भारी मने पड़ प्रिय कोइली रु मने पड़े काऊ काऊ रडी रे तमरो सुमधुर सुर सुबि जाय हाय अरे तमे गोटे कथा कहबो प्रेमलता आ ये कुंथन दास ताकु रिजेक्ट कर दबो नेवर
4: मु कण कहउथली कि तमे लागी पड़ के कोर्ट रे तमो नाटक को बदलै दियो
3: हैं काना मोना
4: हाँ
3: मोनाटा को आपिटेपिट करके बदल देबी
4: हाँ तमो नाटा सुनु सुनु एंदी गर्भिणी गाय छुआ जन्म कला भले लागु छी हाँ
3: प्रेमलता कुंथनटा कोन खराब ना अरे धर ए जेमति चंदन कुंदन बचन आमो फिल्म हीरोइन नूतन बस सेंति कुंथन उड़ैनी
4: नाई मो मते नाटा जम्मार भल लागुनी ए नाटा सुनु सुनु हमर बाघर कैंसिल
3: कैंसिल
4: कैंसिल नु हटाउ कोन तुम्हारा कुंतासुला ना सुनी कि डाडी जमारू राजी हेबे नी
3: अच्छा प्रिय तमे खाली नाटा बदली गले लाइन क्लियर तो
4: आ सब कथा मु बुझीबी खाली आग तमे से गोंधिया नाटा को बदली देलो
3: अरे एबे चालीली ये अच्छा प्रेमलता ये नुआ नाटा कोन करिया कहलो
4: गोटे सिनेमा हीरो रो नाटा बाची करी दे दबो एई जेंती
3: मु भाबुची नाटा को प्रेमनाथ कर देबी तमना प्रेमरता प्रेमर लता माने माने खाली गोटे प्रेमर जेमती गोटे डंके चली छ हा मु तमरो नाथ माने प्रेमनाथ बा चमत्कार
4: एतरो डाडी के हमो बाघर कथा कह देबी
3: ता परे हमरो बाघर गोटिए बेदी रे गोटिए दिन गोटिए तिथि रे

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार जा जा जा जा जा तू बाबा मु घर को जाऊची जा गल्ले आगो तो कथा बुझी कहला कण ना मदभाटी खोल रतना बेहरा जदि तो टांकु न बढ़ेची ताले ताना रतना बेहरा नुह
2: है रतना बेहरा कौड़ी अच रतना बेहरा
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं से निरुदिष्ट
2: ठीक जानी चो रतना बेहरा निरुदिष्ट चंदा मुंड चेप्टा नाक बुझल बाबू मु ताकु नहीं गोटे कविता लिखी
1: कविता
2: सुनिबो कुआड़े गला कविता टा
1: रतना बेहरा ना रे पुणी कविता बाबू सी कौन तुम प्रेमिका कि
2: नाई मऊ अरे सी रतना बेहरा बुझल ताकु धरई देले लक्ष टंका पुरस्कार मिल जो तो सेई कविता लिखुची हाँ प्रिय शिगो मनर मानसी मोर तमक मु झुरी झुरी होइलिणि कंटा बेकार देखी मते बापा तम देउ नाई बाहा धराइले रतना बेहरा मिली जीव लक्षे धराइले रतना बेहरा मिली जीव लक्षे तम पाई तोली देवी सुरम्य प्रसाद अरे अरे अरे लोकटा पळेना ना कोन एई मानक जोगु तो ओडिया साहित्य उन्नति करि पणि ना
3: ये हबीदार का बच्चा सोचु थिला कि 10,000 दे करे मुझे बकरा बनाएगा मैं 1,00,000 रुपया पाऊंगा पूरा 1,00,000
4: 1,00,000 रुपया या वो फेर कोड़ी चोरी करलू ना कर
3: अरे हबीलदार बाबू सलाम सलाम नाई मो साहेब एक तो लॉटरी का टिकट खरीद करी भी है 1,00,000 रुपया तो मिल जीवा
4: 1,00,000 रुपया मिली जीवा अरे भैया अरे वाह वाले पुआ हो वाली किसी गारंटी अच्छी और लॉटरी टिकट 1,00,000 रुपया
5: सुन रतना बेहरा को धरे दे मु तते शून्य शून्य 10,000 रुपया देवी की नहीं देखीबू
3: 10,000 रतना बेहरा को देखिले मु जरूर आपको बताऊंगा ए हबिलदार हमको मुरुख भाबुची आ
2: से हबिलदार तो ते कौन कहुतला किरे मैं भाई
3: से हबिलदार फिर 10,000 देने को कहा हाथ कड़ी भाई
6: ये मिया भाई तू कौन कोई लुख लो
3: अबे मैं बोला कि रतना बेहरा संगरे मोर बिल्कुल मुलाकात है नहीं मु ताकु मोर तो जानता नहीं हूं
2: ठीक करिचु तू मिया भाई टी तू कौन सहज जंतु हेचु बेस भलो करिचु
6: अच्छा हे मिया भाई या हाथ रे तू किछ हाथ हत्या नथली चोरी करबा को केमदी जीवा कहिलु
3: हत्यार मु लेय आसी की हथियार तो ले आसी ए अनातानी अरे मो हाथ टिके आना
2: ये वो पावा केड़े हेज रे
3: अरे एटा हलाल करने वाला हथियार
6: चुप चुप सुन आमे से पहाड़ पाक कु जिबा राती 10:00 परे सेठु बाहरिबा हैं चलो
2: चलो कौन है ना प्रेमलते प्रेमलते
7: मु आ बांची बिनी प्रेमनाथ सत्त कहू छी सुसाइड कर दे
2: सुसाइड नहीं नहीं नहीं प्रियतमा एते बड़ो पाप कथा धरो नि तुंडरे भांगी जाऊ पछे कैलाश चूड़ा अंबर जाऊ फाटी मु तुमको श्योर मैरिज करबी प्रेमलते
7: तमे से दिन आसला पर ना डाडी मते जो माड़ मारले प्रेमनाथ तम संगे कथा ने गोड़ छोटा कर दे बोली धमकेले
2: अच्छा ता माने रसिक शेखर कवि श्रीजुक्त कुंथन माने प्रेमनाथ संगे धोखाबाजी ना ना आउ सह्य करिबार नुहे झटपट सिंह मु तते छाड़ी भी नहीं झटपट सिंह
7: एत्ते बड़ा पार्टी टा काई करछो बा डाडी आस्ते बोले हम पेटर चप्पा छड़े देबे हां
2: झटपट सिंह मु तते सहजे अच्छा प्रेमलता तम डाडी याडे बेले बेले आसंदी बोपालो ये घरु आसला बेले तमको देखि नै तो
7: ना से ड्यूटी को जाई चंती हेटी प्रेमना तो आमे चलो सांग होई कोडे पळैबा
2: त माने पळायन पंती हो हला अच्छा आमो मैरिज
7: कोर्ट रे रजिस्ट्री करी बाही पड़ीबा नले डाडी को हबड़ुरु रक्षा नहीं
2: हमर डाडी डाडी नोंद तो गोटा प्रलम भासुर ताकर से कोटिया मार का निसो को देखले ना खास तम जोगु प्रेमलते एबे आउ को डाडी फाडिंग को बर डर नहीं।

0: जगा छाड़ी भागीबा ताले
1: जीबा जे कुआडी जीबा जे काईबा कोनो आरो रोईबा कोठी
0: अरे मनो को चिनिला बलिया मनो जदी अछि हृदय चिनिला बलिया हृदय जदी अछि गछ मुळे सोइले भी परवा नाही चार टंका कर खाई की सोई पड़ीले भी भोक नाही ना कोन
1: प्रेमलता पुराना प्रेमलता सिंह एणी की प्रेमलता दास
0: अरे नाही मम तुम ना पचरनी
1: आउ
0: हम लव कथा कहउची हम लव जदी ठीक अछि रोईबा खाईबा जगड़ हे जीवनी प्रेमलता गोटे कविता शुणी
1: हेटी तमे हेले हेलिया नबरंग छाड़ जेते बेले देख खाली कविता कविता कोन मिलुचे ए कवितारु खाली बायंग भलिया बडरा बडरा कोन पांच पैसा मिलनता हेले
0: सावधान तमे मोर कविता को करो नाही निंदा अरे तमे कोन जानिबो कविता रो टेस्ट है घुसरी की पाचिला कदळी जेमिती बोपा सेमती दुईता मूर्ख गौडीकार
1: कोन कहलो मूर्ख
0: हां तमे मूर्ख
1: तमे मूर्ख
0: तमे मूर्ख
1: तमे मूर्ख
2: तमे बाला मूर्ख
1: तमे
2: मां मूर्ख
1: तमे
2: 14 पुरुष मूर्ख
1: डाइवोर्स करबी
0: डाइवोर्स मैरिज न होनु डाइवोर्स मरि गल्ले बाबा सॉरी सॉरी सॉरी प्रिय तमा प्रेमलते एने कि तमे जहा कहिबो करबि पछे के डाइवोर्स रो ना धरिबोनी प्लीज
1: ताले कविता पविता छाडी तमे रोजगार बाट देखो
0: रोजगार रोजगार माने इनकम त अरे देखिबा रुओ ए कविता रो दिने ना दिने केम ती इनकम हबो देखिबो
1: फेर से कविता ना धरलो
0: ना ना ना ना माने कविता नुए एने कि इनकम परा रत्ना बेहराटा जदी हाबुडे रे पड़ जांता हे भगवान लखे टंगारे किछ गोटे आरंभ करंती तार तो दर्शन नाही ना
1: घटनाटा कहलो रत्ना बेहरा रो कोन हिची
0: हज्जी जाईची रत्ना बेहरा घर को फेरु नाही बुझिलो चंदा मुंड चेप्टा नाक ता फोटोटा सेई पेपर थिला जे तम डाडी ता ओहो
1: हेटी पेपरटा मु लुचे की तम पाई नै आसी नियो
0: हेट देखो देखो चंदा मुंड ना नाही
1: हां
0: चेप्टा नाक ना नाही
1: हां तो
0: ये गला बेळु को घरु धळा चूड़ीदार पंजाबी पिंदी की भागा ए श्रीमान होइरानिया रत्ना बेहरा को जे धरे दबो ताकू लखे टंगा मिलियो पुरस्कार
1: हां हेटी जियंतारे ना मरंतारे कहलो
0: जियंतारे ना मरंतारे काई से कथा तो लेखाई नै
1: लेखा हितले कोन हितांदा जे
0: लेखा हितले सतरे जियंता बा मुर्दा लेखा हितले कोन हितांदा टंका पाइबा पई कि उडे ढूस कर दंता बोले रत्ना बेहरा एकतरे राम नाम सते अरे होउ पछे के रत्ना बेहरा तो मिली जाईथांदा वाह कि चमत्कार बुद्धि तमरो प्रियतमा प्रेमलते कोनटा को कोनटारे काडीबार बुद्धि बा एथरो तमरो डैडी छाडी हात कड़ी आमो दी जण को हात रे हात गंठी बांधिया को हेइ जिबे रेडी
3: रोल बाड़ीटा को फोपाड़ी दियंति जे तो हाड़ एकासरे गुंड हे
0: जान ओ सॉरी सर सॉरी
3: सॉरी छोड़ौ छी राम पेम
1: डैडी
0: सर मु कोन कहउथली
3: कि किछि नै आउ किछि कहिला बेळु को तो पार्टी एकदम सिलेई कर देबी अरे ये मने मने लक्ष्य पति कोना प्रेम नाथ रत्ना बेरा काई
0: जुजी सर भाबुजी निश्चय पाइबी पाइबार क्षणी आपन को देबी ता खबर ता परे आपन पाई जिबे लक्ष्य हा मोर होइबे ससुर हाय प्रेमलते
3: चुप रत्ना बेहरा को पाइबा पूर्वरु प्रेम संगे राउ केबे नरे नरे हबार देखिले तो सीधा भितरे पुरे दे बुझिलो हम ए तो सास तो कम नुए अरे बाघ नथले मिरिगो नाट नाही
1: नाही नाही डैडी मु केबे आसु नथली कहली नाही जीबिनी डैडी मना करजंदी
3: अच्छा
1: प्रेमनाथ मते हाथ ठारे डाकिले हमरा मु कहले आस किछि होबनी डैडी किछि कहबेनी डैडी कहिजंदी
3: हेमंत
0: ना ए सब मिथ्या कथा सर
3: मिच्छा मिच्छा मु तते 420 420 तो फारे घणा पेलेई दी हे तम हे जाउचना देखिबो इने मो विश्व रूप जा जा हे हे फकड़ रा मना तिनी थर को धर्म छाड़ बुझिलो हे तू आउरी जाइनु हा हा मो संगे हा चल
1: जाउची दादी जाउची प्रेमनाथ
0: पृथ्वी रु सत्यटा पूरा पूरी उठी चली गेला ना कोन चाहू चाहू बोपा आगे ढा मिछ उड़ा को केमती गाय दे गला देखु ना को दिन आउ को न करथिबा कथा कहि बदनाम न करियो बोली किए कहबो अरे बा हे चमत्कार कविता गोटे हबो इटा प्रियतमा प्रेमलता धोका देई चली गलो डाडिंग को संगे रे मु तमको केते भलो पाए हाय ସତ କି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତମେ।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଟକ ରତନ ବେହେରା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ରଚନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଶ, ପ୍ରଯୋଜନ ରବି ଶତପଥୀ, ସହଯୋଗିତା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ରତନ ବେହେରା, ଶିବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଥିଲେ ଝଟପଟ ସିଂ ଭୂମିକାରେ, କୁନ୍ଦନ ଦାସ ଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ହାତକଡ଼ି ଭୂମିକାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳିଆ ଥିଲେ ସଫନମା ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କଲାଖା ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୟେଦ ଅବଦୁଲ ଖାନ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଖଟେଇ ଥିଲେ ଡେଙ୍ଗୁରାବାଲା ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମଲତା ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 ମିଟର ତଥା 972 କିଲୋହର୍ଟ୍ଜ ଯୋଗେ। ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଡିଟିଏସ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने राखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: शिल्पी कंठरे परवर्ती गीत हरिहर सेठी रचनारू

0: जनकरी कहिले रोहिणी त
1: नई
0: यार जो बण बुला अर्जुन ताकू देवी मो भौणी सी हे मो समकक्ष भिणई दुर्जहन दुईभा दे फगुद समय दिन
1: अच्छा
0: जा तुम्हें चली जाओ
1: जाओ
0: एक कहीदे सत्यहान पास बराम कहवा कथा सत्यहान आगे कहीदे सत्यहान चिंता कले भूसिंह दत्त नौला अग्निकुंड पड़ी प्रभु को उद्धार करते सी आज मुझे जारद बोली कहले अर्जुन को उपकार किपर सुझी खाइले पीले पलंग घोड़ा शो रही एका प्रवेश बरज सुंदर सत्यहान कपूर जाए देखिले सत्वर सत्यहामा मन दुख
1: कृष्ण
0: उठे निदा भांगी उठेले कह सत्यहामा तुम्हें कौन मुहटा बैदंती सुची एपरी कौन चिंतार शोच केश गुड़ाक मुकुल करी सत्यहामा किसी कहले पलंग उठी आसी तले बथा पोती बस रही समय प्रभु कौन कहीदे कौन पाई तो मन उणा कर गोटे पद कवि सूर्य बलदेव रथ लिखीदे।

0: अर्जुन कौन से नारी संघस्पर्श करे ना
1: तो
0: पद छुई नियम करी किंतु तुम्हें भूणी की नहीं जा तत्क्षण अबिका जाओ
1: अंतपुर छाड़ी दे
0: मो कथा कह पठी भौणी को कह
1: शुणी
0: स्तरतरे सत्य भाव चलीगले आनंद सुभद्रा सकल जनाणिले कामना पूर्ण
1: होला
0: सत्य भाई आज्ञा दे अर्जुन पर छाड़ीदेवी
1: चल
0: सत्य भाव सुभद्रा को नहीं अर्जुन पहुंची जाइए
1: कौन
0: किए से कबाटे कौन कले रे सत्यमा कबाटे करमा डाकिदे सत्यमा करमारी डाकिले घन घन द्वार फेड़ी दिये तु बीर।

0: Allo, Channal Unni Rakhya Suni Tukye Astru Pisa Suni. Janin Tukye.
1: Nana.
0: Noji Vira Arjuna.
1: Haa.
0: Ushinga Kumari Saragura Gabon Kato Gao Itra Amun Salakha Karuchi.
1: Nishito.
0: Paricha Odeya Noile Saramari Tom Munda Kati Devi.
1: Haa.
0: Kattara Chittare Kanthare Kahile Kya Sattya Hama.
1: Kona Kahile?
0: Arjuna. Are Muda Kuchi, Muda Kuchi, Muda Kuchi, Bhauja Rakuchi. Kale Bhauja Kha. Kwa Rasya?
1: Haa.
0: Namo Anichi Tumonku Sathire, Mo Sathire Nanuga Aschi. कृष्ण पठेछंती
1: हां
0: कले कृष्ण पठेछंती तुम नंद भा कु संगे रहनी अच्छा सुभद्रांकु
1: काहे की
0: सुन मु आज्ञा दउछि
1: हां
0: से मोर मौसी जे होउनी
1: अच्छा
0: ग्रहण करबी नाही
1: ना
0: आदेश दउछि
1: हां
0: सुभद्रांकु ने कृष्ण ऊपर छाड़ी दियो
1: छाड़ी दियो
0: मु ग्रहण करबा जा कृष्ण ग्रहण करबा सेया
1: सेया
0: यही परी कहू कहू राती पाई गला हेउ तारु सुन पंडित तू जा
2: हेला
0: मनो दुखरे नंद भौज पर पड़ी गले
1: हां
0: श्री कृष्ण दांत हसुथिले
1: तापरे
0: सत्यमा पहुंची गले
1: हां
0: दांतुवाणी कटके विजये चक्र पाणी एकालरे मिलि।

0: यही पड़ी सात दिन गुप्त प्रीति है सात दिन गुप्त प्रीति है दिन जमुना को जाई थे स्नान को भाउज मान मेल किए सुभद्रा रेवती देखी पकड़े सुभद्रा अंगे पुरुष चिन्ह गुड़िक
1: निश्चित
0: पचारे ननंद ये चिन्ह पाइल कौ सुदर्शन चक्र बुलु तुम भाई मागरे कह
1: कहले
0: सुभद्रा कहते नुआबू आगे प्रकाश कर अर्जुन को देह दे कथा शुणी के रेवती
1: शुणिले
0: आसी पहुंची गले अंतपुरे बराम भोजन को जाई छंती खाइला समय कहले के रेवती परहर झेउड़ा को चोरी।

अनुराधा पोडवालका कण्ठले शुणन्तु परवर्ती गीत कथाचित्र कन्यादान। तेबे अनुरोधकारी श्रोता हेले सेक्टर 11 सीडीए कटकरु उर्मिला निर्मला प्रत्युष एवं प्रभाकर।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई
2: जी।
3: कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली। तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई, और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?

0: जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहां का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहां बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहां का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांवों की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांवों में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया, और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं, हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उससे भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्यधारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है।

0: इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए। इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया। वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इसमें वर्षा का जल भर जाता है, बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था, वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम हम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को